असंत मूर्ख अंध घोर असंत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वाए संत पापी पाप असंत मूड़े आए फुराए संत मलेच मल पाखाए असंत निंदक करे नानक नीच कह बारे न जा मे जो कुछ पावे सही करी कर

0: अब जाए ए साला जी साला है इतनी संगतियां से बाहर पासों में ना जान समुद्र साथ करता गिरी कुल नामी
1: अंत में चुंदी कहना अंत में करने देना अंत में देखना सुनना।

सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईयां, सिद्धां पुरखां कियां वड्याईयां। तुद विन सिद्धि किनै न पाईया, करम मिलै नाहीं ठाकर हाईया। आखण वाला क्या वेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवारन हारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाऊं। आखण औखा साचा नाऊं, साचे नाम की लागै भूख। उत भूखै खाई चलियह दुख, सो क्यों विसरै मेरी माई। साचा साहिब साचै नाई राव, साचे नाम की तिल वड्याई। आख थके कीमत नहीं पाई।

मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ, हर जन केवट भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिलै तृप्ता सह, मिल संगत गुण परगास, जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुरु संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास, राग गुजरी महला पंजवां, काहे रे मन चित वह उद्दम, जा आहर हर जीव परया, शैल पत्थर मह जंतु पाए, ता कर जिक आगे कर धरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाए।

तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनिक अनेक अनंता, तेरी अनिक करह हर पूजा जी, तप तपह जपह बेअंता, तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर न कोई, तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी, तू निचल करता सोई, तुदे आपे भाव है सोई वरता जी, तू आपे करह सोई, तुदे आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तुदे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा।

देखा तह डूबी अले। मन एक न चेत समूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाउ ना हो जति सती नहीं पढ़या, मूरख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक ते

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो आप हाथ दे मुहे बचाव हो।

वास संगरिये पूर्ण हुए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है।

मान बहुर रचतीनी, कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा। शिगरे श्रेष्ठ दिखाए अचम भव, आद जुगाद स्वरूप सोयम भव। आब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो वार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे। पुरख जवन

काल निकट नह ऐ है। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहरहु, ताके ताप तनक मह हरहु। रित सिद्ध कर्म सब हुई, दुष्ट छाह छव सकै न कोई।

गलत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यो श्री असुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तो हे बकान्यो दो हर

आपि उतरे सुनी सच्ची वाणी। संत साजन भए सरसे पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आप हर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे, सुनते

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर।

कर कृपा प्रभ आप मिलाए, मिट गए बैर भय सब रैन, अमृत नाम साध संग लैन, सुप्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण हुई सेवक की सेव, आल जंजाल विकारते रहते, राम नाम सुंदस ना कहते, कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निभी खेप हमारी, प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसे सो होत निदान, सर्व इच्छा ताकि पूरन होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊच पाए अस्थान, बहुर न होवे आवन जान, हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिस है प्राप्त होए, खेम सांत रिद नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध, विद्या तप योग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल परगास, सबके मध्य सगल ते उदास, सुंदर चतुर तट का बेता, समतरसी एक दृष्टेता, एहि फल तिस जन के मुख भनै, गुरु नानक नाम बचन मन सुनै, एहि निदान जपे मन कोए, सब चुक महता की गत होए, गुण गोविंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत के मन विश्राम, कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै, जाके मस्तक करम प्रभ पाए, साध सरन नानक ते आए, जिस मन बसे सुने लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत, जन्म मरण तक।

है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजेय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंत है, अबंद है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अला है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अछूत है, अलूक है, असूक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबा है, अगा है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, पुजंग प्रयाचंद, नमो सर्वमानी समस्ती निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने,

नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमी अपोकी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रे देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो कूप कूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं करनासी अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध करता अधो उर्ध अर्धं अगंग उग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अछेदी अपेदी अनामंग कामं समस्तु पराजी समस्तस्ततामं तेराजोर चाचरी छंद जले हैं तले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयाचंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमस्तुंग निर्नाथे नमस्तुंग परमाते नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अलंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपट छंद्व प्रसाद अमृत गर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पानी सर्वंग मानी सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्व

देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जतर तत्र दिशा विसाव होय फैल्यो अनुराग नाम काम बहीन पेकत ताम हूं नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदै मान तथा एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत

අංග අභ අපංග ගත්මිත පාර ගුණගන් උදාර මුණගන් ප්‍රණාම නිර්පය නිකාම අතුදුත් ප්‍රචණ්ඩ මිත්ගත් අකණ්ඩ ආලිශ්‍ය කරමු ආදෘශ්‍ය තරමු සර්බාපරණඩය අණ්ඩණ්ඩ බඩය චාචරී චන්ත්ව ප්‍රසාද ගෝබින්දේ මුකන්දේ උදාරේ අපාරේ හරියං කරියං නිර්නාමේ අකාමේ පුජං ප්‍රයාචන්ද චතරචක්‍ර කර්තා චතරචක්‍ර හර්තා චතරචක්‍ර දාන්නේ චතරචක්‍ර ජාන්නේ චතරචක්‍ර වර්තී චතරචක්‍ර පර්තී චතරචක්‍ර පාලේ චතරචක්‍ර කාලේ චතරචක්‍ර පාස්සේ චතරචක්‍ර වාස්සේ චතරචක්‍ර මාන්නේ චතරචක්‍ර දාන්නේ චාචරී ඡන්ද න සත්‍රය න මිත්‍රය න පර්මං න පිත්‍රය න කර්මං න කායේ අජන්මං අජායේ න චිත්‍රය න මිත්‍රය පරි හැ පවිත්‍රය පර්ථිසය අතිසය අදෘශ්‍යය අකෘශ්‍යය භගවති චන්ත්ව ප්‍රසාද කතති කියා චිජ දිසය කියා පිජ පිසය කියා ගංජ කර්මය කියා පංජ පර්මය කියා පිජ ලුකය කියා දිත් සුකය के अवतूत बरनय के बेपूत करनय के राजं प्रभा है के धर्मं तुजा है के आसूक बरनय के सर्वा अपरनय के जगतं कृति है के छत्रं छत्रि है के बर्मं सरूप है के अनुभव अनुप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रं बहिन्न के कय अधीन है के रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह पाप गैब है के गैबुल गैब है के अफुल गुना है के साहन सा है के कारण कुनिंद है के रोजी देहंद है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राजय के सर्वत्र साजय के सर्वत्र दीनय के सर्वत्र लीनय के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देशय के सर्वत्र पेशय के सर्वत्र कालय के सर्वत्र पालय के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलिम है के परमं फहिम है के अकल आलाम है के साहिब कलाम है के हुस्न अल वजू है तो मामुल रुजू है हमेशुल सलाम है सली खतमोदाम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बेलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजुवल निदान है हरीफुल अजीम है रजायक यकीन है अनेकुल तरंग है अभेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल्खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुगत सुधा है सदैवं स्वरूप है अभिधि अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है अवंगाध रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामी त्रिवर्गं त्रिवाद्ये अगंजे अगाधे सुभं सर्वभागी सुसर्वा अनुरागी त्रिपुगत स्वरूप है अचिज है अचूत है तिनर्कं प्रणास है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विभुगत स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है निरुक्त सदा है सदैवं प्रभा निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी चंद।

आनंद हैं, बंद हैं, भगत हैं, विरक्त हैं, अनाथ हैं, प्रकाश हैं, निश्चिंत हैं, सुनित हैं, अलिख हैं, अंधिख हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटाह हैं, अगाह हैं, संभ हैं, अगम हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, आजाद हैं, चरपट छन्त्व प्रसाद सर्वंग हंता, सर्वंग गंता, सर्वंग ख्याता, सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हर्ता, सर्वंग कर्ता, सर्वंग प्राणं, सर्वंग त्राणं, सर्वंग कर्मं, सर्वंग धर्मं, सर्वंग युक्ता, सर्वंग मुक्ता रसावल छन्त्व प्रसाद नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विपुते परमात्मं परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध विपुते अनंगी अनामित्र पंगी त्रकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकुं सरी कै मितो अमी कै सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती चंत्वा प्रसाद कि जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है हमें सुलसलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनल चराग है कि कामल करी मैं कि राज करी मैं कि रोजी देहांद है कि राज करहिंद है करी मुल्क माल है कि हुसनल जमाल है धनी मुल्क राज है गरीबुल निवाज है हरिपुल चिकन है हिरासुल फिकन है कलंकंग प्रनाश है समस्तुल निवास है गंजल गनी मह रजायक रही मैं समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकंग प्रनाश है बहसुल निवास है कि सर्वल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जरूरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि मितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनांग है कि मितो अपंग है मद पार चंद त्व प्रसाद मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम अरवर अगंज हर नर प्रपंज मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम अरवर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनुभवनाश मुनमन प्रकाश गुनगन प्रणाम जलतल मुदाम अंचिज अंग आसन अपांग उपमा पार गत मित उदार जलतल अमंड दिस विस अपंड जलतल महंत दिस विस बेअंत अनुभवनाश त्रितर तुरास आजान बाहु एक सदाहु ओंकारात कथनी अनाथ खल खंड ख्याल गुरवर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंचिज गात आजिज न बात अनचंज गात अनरंज बात अनटुट भंडार अनटट अपार वाडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अनब्रन अनंत दाता महंत हर बोल मना चंत्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है कलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा करें विश्वंपर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है तपा तप है अकृता कृत है अमृता अमृत है अमृतामृत है करुणा कृत है कृता कृत है धरणी त्रित है मितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृतामृत है जबा कृत है अमृतामृत है नरनायक है खलकायक है विश्वंपर है कुरुणालय है नृपनायक है सर्पायक है पवभंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है पुजंग प्रया चंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंग तामसंग शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशा से नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे
त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चंद अजय अलय अपय अवय अपू अजु अनासु अकासु अगंज अफंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम काम गाह अटाह अनाथे प्रमाथे अजूनी अमोनि नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रया चंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सुधर्मंग बेपूते सदा सचिदानंद सत्रंग परनासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेपूते गजायब गनिमे हरियं करियं करिमुल रहिमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते स्वयं पव सुभं सर्वदा सर्व जुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदायंग संगे अपंगं।

गौरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बापतरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर भूषण प्रकाशा, सकल काल का किया तुमासा, जवन काल जोगी शिव की यो, वेद राज ब्रह्मा ज्योति यो, जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दै जच्छन उपजायो, आदंति कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सुवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मुँह बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने, जब उदकर्क करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन श्रीर सब तार है, आप अपनी बूजू चार है, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम, निरंकार निरपकार निर्लंब, आद नील अनाद संब, ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत वेदा, ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, के बिच सजा प्रथम संसारा, एक है रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कहि भूपा, अंडज जेरज से तज कीनी, उत भुज खान बहुर रच दीनी, कहूँ फूल राजा होवै बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर कैठा, सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भाव, आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भाव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संगरो, दुष्ट जिति उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता, जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते है, ताकि काल निकट नह है, रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट हरिष्टर तत्काला, कृपा दृष्टन जाहि निहरे हो, ताकि ताप तनक मैं हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर मुँह सब हुई, दुष्ट छा चव सक न कोई, एक बार जिन तुम्हें सुबारा, काल फास्ते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारू कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा, खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ धैले हो उबारी, सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख तेले हो बचाई, कृपा करे हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता, किलबिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखेन को छय करता, श्री अस्तु जप भए दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बाछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई, अड़िल सुनै गुंग जो याहे सुरस न पावई, सुनै मूड चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहै, हो जो याकी एक बार चौपाई को कहे, चौपाई संबत सत्रह सैस पनी जय, अर्ध सैस गुण तीन कही जय, पाद्र सुदी अष्टमी रवारा, तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा, सुवैया

कह मन वसिया बाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरै साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब बुझाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट्टो जिस्तियां ए वडे आईया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत दुवस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कह लागे कह नानक तै सुख हुआ तित घर अनहद वाजे साची लिवै बिन दे निमाणी लिवै बाजो क्या करे विचारिया तुद बात समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया ए सुनो होर थाओ नाही शब्द लाग सुवारिया कह नानक लिवै बाजो क्या करे विचारिया आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किलवे कट्टे ज्ञान अंजन सारिया अंदरो जिनका मुँह टुटा तिनका शब्द सच्चा सुवारिया कह नानक वो आनंद है आनंद गुरु ते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावै पावै ता सो जन दे जिसनु होर क्या करह विचारिया एक भरम भूले फिरह दिसक नाम लाग सुवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा पावे कह नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे आवो संत प्यारियो कथ की करह कहानी कथ केरी कित दुआरे पाइय तन मन तन सब सब गुर को हुक्म ने पाइय हुक्म ने हो गुरु के रागा वो सच्ची बाणी कह नानक सुनो संतो कथ्यो कथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किने न पाया चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिने तू भरम भुलाया माया ता मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया कुर्बान कीता तिसे विट्टो जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले कुटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरै नाले साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चित लाई ऐसा कम मूले न कीचै जितंत पछोताई है सतगुरु का वदेश सुन तू हुवै तेरे नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगम गोचरा तिरंत न पाया अंतो न पाया किने तेरा अपना तू जाने जी जन सब खेल तेरा क्या कुआ कुखाने आखैता वे कह सब तू है जिन जग तू पाया कह नानक तू सदा गम में तिरंत न पाया सुर नर मुंजन अमृत खोज दे सुमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जन सब तुद उपाय कबेक प्रसन आया लभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया कह नानक जिसनु आप तुटा तिन अमृत गुर ते पाया भगता की चाल निराली चालना निराली भगता केरी बिक मार्ग चलना लभ लोभ अहंकार ता तृष्णा बहुत नाही बोलना कन्हो तिखी वाल हुन कीत मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समानी कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली ज्यों तू चलाहे तिव चलै स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चलाहे तिव चलै जिन्ना मार्ग पावे कर कृपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा त्या वहे जिसनु कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे कह नानक सच्चे साहिब ज्यों भावै तिवै चलावे सोहिला सब सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सुनाया तिन कह मन वसिया जिन धुरो लिख आया इक फिरै कनेरे करहै गल्लां गली किने न पाया कह नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटम सहज चुप संग सुबाइया कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिन गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज न उपजै बिन सहजै सहसा न जाए नह जाए सहसा कितै संयम रहे कर्म कमाए सहसै जियो मलीन है कित संयम धोता जाए मन धोवो शब्द लागो हर स्यों रहो चित लाए
कहे नान गुरप्रसादी सहज उपजय ऐसा इव जाए। जीहो मैले बारों निर्मल जीहो ता मैले तिन जन्म जुए हारिया। ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया। वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिर है ज्यो बेतालिया। कह नान जिन सतजिया कूड़े लागे तिन जन्म जुए हारिया। जीहो निर्मल बारों निर्मल बारों ता निर्मल जीहो निर्मल सतगुरु ते करनी कुमाणी। कूड़ की सोय पहुँचे नाही मनसा सत समाणी। जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे। कह नान किन मन निर्मल सदा रह है गुरु नाले। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख हुवै हुवै ता सन्मुख सिख कोई। जीहो रह गुरु नाले गुरु के चरण हृदय ते आय अंतरात्मै समाले। आप छठ सदा रह परने गुरु बिन अवर न जाने कोए। कह नान सुनो संतो सो सिख सन्मुख हुए। जे को गुर ते वेमुख होवै बिन सतगुरु मुक्त न पावै। पावै मुक्त न होरतै कोई पुछो भविखिया जाए। अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुर मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न पाए। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी। बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। जिनको नदर कर्म होवै हृदय तिना सुमाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग पाणी। कह नान सदा गावो सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी। हर हर नित करह रसना कहया कछु न जानी। चित जिन का हिर लिया माया बोलन पैरवाणी। कह नान सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा इहो हुआ समाओ। शब्द सेती मन मिलया सच्चे लाया पाओ। आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए। कह नान शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। शिव सकता पाए कह करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताया वेखै गुरमुख किसे बुझाए। तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै कस्यों लिवलाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पा विचार दे तत्तै सार न जानी। तत्तै सार न जानी गुरु बाजो तत्तै सार न जानी। कही गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुत्या रहण विहानी। गुर कृपा ते से जन जागे जिना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी। कह नानक सो तत पाए जिसनु अंदिन हर लिव लागै जागत रहण विहानी। माता की उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है। मनो क्यों विसारी है वडदाता जगन में आहार पहुँचावे। वो सुनो क्यों पोहे न सकी जिसनु अपनी लिव लावे। अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है। कह नानक वडदाता सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया। माया गण सभी को जेही करतै खेल रचाया। जात सुपाण ता जम्मिया परवार भला पाया। लिव छुटकी लगी तृष्णा माया मरवरताया। ए माया जितर विसरै मूप जय पाओ दूजा लाया। कह नान गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिन विचे माया पाया। हरे आप मुल कह मुल न पाया जाए। मुल न पाया जाए किसै विट हो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुरु जे मिलै तिसनु सिर सौपिया विचो आप जाए। जिस दा जीव तिस मिल रहे अर वसै मन आए। हरे आप मुल कह भाग दिना के नानका। जिन हर पल्लै पाए हरास मेरी मन वणजारा। हरास मेरी मन वणजारा सतगुरु ते रास जानी। हार हर नित जपे हो जी हो लाह खटे हो दिहाड़ी। इहो धन तिना मिलया जिन हरे आपे पाणा। कह नानक रास मेरी मन हुआ वणजारा। ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए। प्यास न जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्लै न पाए। हर रस पाए पल्लै पीए हर रस बौड़ न तृष्णा लागै आए। इहो हर रस करमी पाईए सतगुर मिलै जिसे आए। कह नानक होर अन रसा विसरे जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरे आ हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग मैं आया। हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मैं आया। हरे आपे माता आपे पिता
जिन जीव पाए जग दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया, तन चलत हुआ चलत नदरी आया। कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, जो तरा कीता तू जग में आया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए, शोक दुख न व्यापे, गुरचन लागे दिन सुभागे, आपना फिर जापे। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कह नानक प्रभा मिलिया, करण कारण जोगो। ए श्री राम मेरे इस जग में आए, कह क्या तुद कर्म कमाया, कि कर्म कमाया तुद श्री राजा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया, गुरु प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया। कह नानक शरीर प्रवाण हुआ, जिन सतगुरु स्यो चित लाया। हे नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मैं ज्योत तरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया। यो वे संसार तुम देख दे, वर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुरु प्रसादी बुझिया जा वेखा, हर एक है हर बिन अवर न कोई। कह नानके नित्र अंध से, सतगुर मिले दिव दृष्ट होई। हे श्रवण हो मेरे हो, सच सुन नैनो पठाए, सच सुन नैनो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। जित सुनी मन तन हरिया, हुआ रसना रस मानी, सच लख विडानी ताकि गत कही न जाए। कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो, सच सुन नैनो पठाए। हर जियो गुफांदर रख कै वाजा पवन वजाया, बजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए। दसवा गुप्त रखाया, गुरुद्वारे लाए भावनी, कना दसवा द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नव नव निध, तिष्टांत न जाई पाया। कह नानक हर प्यारे, जियो गुफांदर रख कै वाजा पवन वजाया। यो साचा सोहेला सच कर गावो, गावो ता सोहेला कर सच, जिथे सदा सच त्यावहे। सचो त्यावह जा तुद भावह, गुरमुख जिना बुझावहे। यो सत्सबना का खसम है, जिस बख्से सो जन पावहे। कह नानक सच सोहेला सच कर गावहे, आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे।

सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस दीवान पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तग।

0: गलमाला तिलक लाटंग दोए धोती वस्त्र कपाटंग जे जान ब्रह्मं करमंग सब पोकर निश्चो करमंग कहो नानक नहचो त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे।
1: बड़ी कपड़ू स्वामी।

ना हो सुट नाम लग ना हो जला न जाए अन्न सुमन स्नान का जो गल चले पाए चौंकण मुलन आया बह चौंके पाया सिखा कण चढ़ाइया।

गुरवाक निर्मल सदा चानन नित साच तीर्थ मजना साच न लागे मैल क्या मल धोई है।

गत संग मीता संत संगत कर नजर मेल मिलाया कहन कह सब कोए केवड आखिया हो मूर्ख नीच अजान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत भाखी तित मन मानिया मेरा

अंगीकार ओह करे तेरा सब न गला समरथ स्वामी कह नानक मन मेरे साची साहेबा।

अशंख मूर्ख अंध घोर अशंख चोर राम अशंख अमर कर जाए अशंख कलवड हत्या शंख पापी पाप अशंख मूड़े आर करे अशंख मलेच माल पाए अशंख निंदक।

निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी।

अशंख मूर्ख अंध घोर अशंख चोर राम अशंख अमर कर जाए अशंख गड़बड़ हत्या कमाए अशंख पापी पाप अशंख कूड़े आर करे फिराए अशंख मलेच मल पाक खाए अशंख निंदक करे पा नानक नीच कहे क्या मारे न जावा के जो तुझ पावे सही फलिका सदा सलामत संत नाम संत नाम राम राम संत

सोहन पंच प्रवान सदरी कर्म सवे ने कछ खाई उथे पाए नानक गया कर्म खंड का एवो।

निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैलम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी।

संत मूर्ख संत घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कलवट हत्या कमाए संत पापी पाप असंत कूड़े आए संत मलेर मल पाए असंत

लट कपट करे बेदया मिथ्या विख्याद, ऐसी पेखी नेत्र में पूरे गुर प्रसाद, राज मिलक धन जोबना नाम है बिन बाद रहाव। रूप धूप सुगंधता कापर पोगाद, मृत संग पापिष्टता न होए दुर्गाद। फिरत फिरत मानुक पया खिन भंगन देहाद, ए अवसर ते चुकिया बोझोन प्रमाद। प्रभ कृपा ते गुर मिले हर हर बिस्माद, सुख सहज नानक सुख सहज नानक आनंद ताकै पूर्ण नाद। बिलावल महला पंजवां, चरण पय संत पोए था तरे सागर जेत, मार्ग पायो ध्यान में गुर दसे पीत। हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत, उठत बैठ सोते हर हर हर चेत। रहाओ पंच चोरा गए भगे जब साध संगेत, पूंजी साबद कणो लाभ गृह सोभासेत। ने चले आसन मिटी चिंत नाही डोलेत, परम पुलावा मिट गया प्रपेखत नेत। गुण गंभीर गुण नायका गुण कहिया केत, नानक पाया साध संग हर हर अमरेत। बिलावल महला पंजवां, बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथारी, मृत संग सब प्रमिटे सब गत पई हमारी। महला पंजवां, बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथारी, मृत संग सब प्रमिटे गत पई हमारी। जा दिन पेटे साध मोहे वा दिन बलिहारी, तन मन अपनो जीरा फिर होवारी। रहाओ ये छिड़ाई मोहे ते इतनी दृढ़ तारी, सगल रेने मन पया बिनसी अपतारी। निंद चिंद पर दुख ना एखिन मैं जारी, दया मयार निकट पेख नाही दूरारी। मन तन शीतल पय अब मुक्ते संसारी, ही चीत सब प्राण तन नानक दरसारी। बिलावल महला पंजवां, टहल करो तेरे दास की पग चारो बाल, मस्तक अपना पेट दियो गुण सुनो रसाल। तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलो दयाल, निष्पा सुर मन आनंद होत चितवत कृपाल। रहाओ जगत उदाहरण साध प्रभ तिन लागो पाल, मोको दीजे दान प्रभ संतन पगराल। सियान कछ नहीं नाही कछ काल, भ्रम पै राखो मोए ते काटो जमजाल। बिनो करो करुणा पते पिता प्रतपाल, गुण गावो तेरे साथ संग नानक सुख साल। बिलावल महला पंजवां, कीता लोड़ै जो करै तुझ बिन कछ नाहे, प्रताप तुम्हारा देखै जमदूत स छड जाहे। तुमरी कृपा ते छूटिया बिन सयमेव, सर्व कला सम्राथ पारब पूरे पूरे गुरुदेव। राव खोजत खोजत खोजिया ना मैं बिन कूर, बिन सुख सब सत साध जीवन सुख सब साध संग प्रभ मनसा पूर। जित लावो ते तित लगै सियानब सब जाली, जत का तुम भरपूर हो मेरे दीन दयाली। साफ किछ तुम ते मंगना वड़ भागी पाए, नानकी अरदास प्रभ जीवा गुण गाए। बिलावल महला पंजवां, साध संगत कै बास बै कल मल सब नसना, प्रभ से ती रंग रातिया ताते गर्भ नंग रसना। नाम कहत गोविंद का सूची पई रसना, मन तन निर्मल होई है गुर का जप जपना। रहाओ हर रस चाखत त्रापिया मन रस लय हसना, बुत प्रगास प्रगट पई उल्टी उल्ट कमल बिगसना। शीतल सांत संतोख हुए सबू जी तृष्णा, दै दिस्तावत मिट गए निर्मल थान बसना। राखन हार राख्या पय ब्रह्म पसना, नाम निधान नानक सुखी पेख साध दर्शना। बिलावल महला पंजवां, पानी पखा पीस दास कै तब होए निहाल, राज मिलक सिकदारी आय अग्नि में जाल। संत जना का छोरा तिस चरणी लाग, माया तारी छत्रपत तिन छोड़ो त्याग। रहा संतन का दाना रूखा सो सर्व निदान, अंग्रेह साकत क्षति प्रकार से भिखु समान। भगत जना का लुगराय ओढ़ नगर न होई, साकत सिर पाओ रेशमी पहरत पत खोई। साकत स्यो मुख जोड़िया वे अध विचों टूटे, हर जन की सेवा जो करे इत उत छूटे।
सब के तुम ही ते हो आया बंत बनाई दर्शन भेट साधका नानक शरण नानक गुण गाई बिलावल महला पंजवा सर्वनि सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो संत सरण कर सीस धर हर नाम ते आवो कर कृपा दयाल प्रभु निध सिद्ध पावो संत जना की रेणुका लय माथा लावो रहाओ नीच ते नीच अत नीच होए कर बिनो बुलावो पाव मलो वाया त्याग संत संग समावो सास सास न विसरे अनकत न तावो सफल दर्शन गुर भेटिए मान मोह मिटावो सतसंतोख दया धर्म सिगार बनावो सफल सुहागण नानका अपने प्रभ पावो मिलावल महला पंजवा अटल बचन साधु जना सब मैं प्रगटाया जिस जन हुआ सा संग तिस भेटे हर राया एह प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया अनेक बाता सब कर रहे गुर घर लय आया रहाओ शरण परे की राखता नाही सहसाया करम भूम हर नाम बोए अवसर दुल पाया अंतर जामी आप प्रभ सब करे कराया पद उपनीत कणे करे ठाकुर बिरदाया मत भूलो मनुख जन माया परमाया नानक तिस पत रख सी जो प्रभ पहराया बिलावल महला पंजवा माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे अनेक छिदर मन में टके निर्मल दृष्टि क्यों बिसरे ब्राह्मण है ते जिसके गुण ए प्राव ताज रचे जी आंस्यो सोरल या खे रहाओ सिमरो सिमरो सा सास मत विलम करे छोट प्रपंच प्रभ स्यो रचो तज कूड़े में जिन अनेक एक बहु रंग किए है होसी ए कर सेवा तिस पार ब्रह्म गुर ते मत ले ऊचे ते ऊचा वडा सब संग बरने हे दास दास को दास रा नानक कर ले हे बिरावल महला पंजवा एक टेक गोविंद की त्यागी अन्यास सब ऊपर समरथ प्रभ पूर्ण गुणतास जन का नाम आधार है प्रभ सरणी पाहे परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे राव आप रखा आप देवसी आपे प्रतिपार दीन दयाल कृपा निधय सा सा सुमार करणहार जो कर रहा साई वड्याई गुरपुर उपदेसिया सुख खसम रजाई चिंतन दे सागण ताज जन हुकम पछाता न बिन सह न छूट जाए नानक रंग राता बिलावल महला पंजवा महातपते भई शांत परसद पाप नाठे अंधकूप मंगल तथे काढ़े दे हाथे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जिन भेट तो सुखी जी दान देन राव परा पुरबला लिखिया मिले आया ब्याए बस्त संग हर साधक पूर्ण आसाए भय बिन सहते लोके पाए सुख थान दया करी समरथ गुर बसिया मन नाम नानकी तू टेक प्रभ तेरा आधार करण कारण समरथ प्रभ हर अगम अपार बिलावल महला पंजवा सोई मलीन दीनहीन जिस प्रभ बिसराना करण हार न बुझाई आप गने बिगाना दुख तदे जद विसरए सुख प्रभ चित आए संतन कया नांदे हो नानक संतन कया नांदे हो नित हर गुण गाए रहाओ ऊचे ते नीचा करे नीच खिन मैं थापे कीमत गई न जाई ठाकुर प्रतापे पेकत लीला रंग रूप चलने देने आया सुपने का सुपना पया संग चलिया कमाया करण कारण सम्राट पराब तेरी शरणाई हर दिन सरण नानक जप सद सद बल जाई बिलावल महला पंजवा जल ढोवो शीस कर कर पग पखलावो बार जाओ लख बेरिया दर्श पेख जीवावो करो मनोरथ मन माहे अपने प्राप्त पावो देव सोनी साध कहे बीजन टोलावो रहाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मन है पिलावो वरस में शांत तृप्त होए बिख जलन बुझावो जब भगत करह संत मंडली तिन मिल हर गावो करो नमस्कार भगत जन धूर मुख लावो उठत बैठत जपो नाम कर्म कमावो नानकी प्रभ बेनती हर शरण समावो बिलावल महला पंजवा
एहो सागर सोई तरह जो हर गुण गाए साध संगत कै संग वसै वडभागी पाए सुन सुन जी वैदास तुम बाणी जनिया की प्रगट भई सब लो मैं सेवकी राखी राव अगन सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई अमृत नाम जल संचिया गुर भय सहाई जन मरण दो काटिया सुख का थान पाया काटी सिलक ब्रह्म मोह की अपने प्रभ पाया मत कोई जानो अवर कच सब प्रभ कै हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ बिलावल महला पंजवा बंधन काटे आप प्रभ होआ कृपाल दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकि नदर निहाल गुरपुरै कृपा करी काटिया दुख रोग मन तन शीतल सुखी पया प्रत्यावन जोग रहा औखदार का नाम है जित रोग न व्यापै सत्संग मन तन हितै फिर दुख न जापै हर हर हर हर जापिया अंतर लेव लाई किल विकुतरै सुधोय साधु शरणाई सुनत जपत हर नाम जस ताकि दूर बलाई महामंत्र नानक कथा हर के गुण गाई बिलावल महला पंजवा पैत उपजय भगत प्रभ अंतर होए सांत नाम जपत गोविंद का मिनस भ्रम प्रांत गुरपुरा जस पेठिया ताकै सुख प्रवेश मन की मत आगिय सुनिया उपदेश राव सिमरत सिमरत सिमरिया सो पुरख दातार मन ते कबू न विसरै सो पुरख अपार चरण कमल स्यो रंग लगाया चरज गुरुदेव जाको कृपा करो प्रभता को लावो सेव निध निधान अमृत पिया मन तानिया आनंद नानक कबू न विसरै प्रभ परमानंद बिलावल महला पंजवा त्रिसन बुझी ममता गई नाठे पै भरमा तित पाई आनंद पया गुर की ने धरमा गुरपुराया राध्या बिनसी मेरी पीर तन मन सब शीतल पया पाया सुख बीर रहा सोवत हर जप जाग्या पेख्या बिस्माद पी अमृत तृप्ता स्या ताका चरज स्वाद या मुख संगी तरे कुल कुटम उधारे सब सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन नानको कृपा पई दास अपना कीन बिलावल महला पंजवा हर भगतां का आसरा अन नाही ठाओ तान दिबाण परिवार धन प्रभ तेरा नाओ कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिये निंदक निंदा कर पचे जमकाल ग्रसिये राव संतां एक त्यावना दूसर को नाहे एक सागै बेनती रव्या स्रव थाय कथा पुरातन सुनी भगतन की बानी सगल दुष्ट खंड खंड किए जन लिये मानी सत वचन नानक कहे प्रगट सब माहे सि प्रभ के सेवक शरण प्रभ तिन को पौ नाहे बिलावल महला पंजवा बंधन काटै सो प्रभु जाकै कल हाथ यवर कर्म नहीं छूटिया राखो हरनाथ तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए संसार ते राखै गोपाल रहाव आसा परम विकार मोह इन मह लोभाना झूठ समग्री मन वसी पार ब्रह्म न जाना परम ज्योत पूर्ण पुरख जी सब जी तुम्हारे ज्योता ज्योतु राखो ज्यो तू राखै त्यों रहा प्रभ अगम पारे करण कारण सम्राथ प्रभ दे अपना नाओ नानक तरिय सात संग हर हर गुण गाओ बिलावल महला पंजवा कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत मा मोहनी मोहया नानक की रीत मन खुठहर तेरा नहीं विश्वास तू महा उदमादा खरका पै खर तौ छुटै जो ऊपर लादा रहा जाप तप संयम तुम खंडे जम किरी दुख डांड सिमरै नाही जून दुख निर्लजे पांड हर संग सहाई महामीत स्यो तेरा भेद बीदा पंच बटवार बटवार रही उपजो महाखेद नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वसकीना तन धन सर्बस अपना प्रभ जन को दीना मिलावर महला पंजवा उदम करते आनंद भया सिमरत सुखसार जप जम नाम गोविंद का पूर्ण विचार चरण कमल गुर के जपत हर जी हर जाप हो जीवा पार ब्रह्म आराधते मुख्य अमृत पीवा
रहाओ जी जंत सब सुख बसे सब कै मन लोच पर उपकार निश्चित वते नाही कछ पोच धन सुथान बसंत धन जय जपिया नाम कथा कीर्तन हर अत कना सुख सहज विश्राम मन ते कदे न विसराय नाथ को नाथ नानक प्रभ शरणागति जाके सब किछ हाथ बिलावल महला पंजवां जिन तू बंद कर छोड़िया पुन सुख मैं पाया सदा सिमर चरण अरबिंद शीतल होता आया जीव त्या थवा मुया किश कामना आवै जिन्ह रचन रचाया कौते स्यो रंग लावै रहाव रे प्राणी उसन सीत करता करै काम ते काडै कीरी ते हस्ती करै टूटा ले गाडै अंडे जिर सित युत पुजा प्रभ की यह किरत किरत कमावन सर फल रविय हर निरत हम ते कछु न हो ना सरण प्रभ साध मोह मगन कूप अंध ते नानक गुर काड बिलावल महला पंजवां खोजत खोजत मैं फिरा खोजो बन थान अचल अचेदा भेद परावे ऐसे भगवान कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग जागन ते सुपना भला बसिया प्रभ संग राव वरण या शर्म शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास रूप न रेख न पंच तत् ठाकुर अविनाश स्वरूप संतन कहे विरले जोगी सर कर कृपा जाको मिले धन धन ते ईश्वर सो अंतर सो बारे बिनसे तै परमा नानक तिस प्रभ भेटिया जाके पूर्ण करमा बिलावल महला पंजवां जे जंत सुप्रसन्न भय देख प्रभ प्रताप करज उतारिया सतगुरु करया हरियाप खात खर्चत निबहत रहाय गुरसवज अकूट पूर्ण भई समगरी कबहो नहीं टूट रहा साध संग आराधना हर निधि अपार धर्म अर्थ हर काम मोक देते नहीं बार भक्त राधा एक रंग गोबिंद गोपाल राम नाम तन संचिया जाका नहीं सुमार शरण परे प्रतेरिया पर की प्रभ की वडियाई नानक अंत न पाई आय बेअंत गुसाई बिलावल महला पंजवां सिमर सिमर पूर्ण प्रभु कार्य पैरास करतारपुर करता वसै संतन कै पास रहाओ बिगड़ न को लागता गुर पै अरदास रखवाला गोबिंद राय भगतन की रास टूटना वकदे मूल पूर्ण भंडार चरण कमल मन तन बसे प्रभ अगम अपार बस्त कमाव सब सुखी किच ऊन न दिसै संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीसै जय जयकार सवाय करै सहिथान सुहाया जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया मिलावल महला पंजवां हर हर हर आराध्य होइयै आरोग रामचंद की लष्टका जिन मारिया रोग रहा गोरपुरा हर जापिया नित कीचै भोग साध संगत कै वारण मिलिया संजोग जिस सिमर सुख पाईऐ बिन सब योग नानक प्रभ शरणागति करण कारण योग राग बिलावल महला पंजवां दुप दे घर पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद अवर उपाव सब त्यागया दारू नाम लया ताप पाप सब मिटे रोग शीतल मन पया गुरपुरा आराध्या सगला दुख गया रखना रह राख्या अपनी करमया राव बाह पकड़ प्रभ काढ़िया कीना अपनाया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरभया बिलावल महला पंजवां कर धर्म सक थापिया नाम दीनो दान सफल सेवा पार ब्रह्म की ताकि नहीं हान आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन जो जो चित वह साध साध जन सो लेता मान रहा शरण परे चरण अरबिंद जन प्रभ के प्राण सह सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान बिलावल महला पंजवां चरण कमल का आसरा चरण कमल का आसरा दीनो प्रव्याप प्रभ शरणागत जन परे ताका सद प्रताप राखण हार अपार प्रभ ताकि निर्मल सेव नानक नाम सलाही है भय दुस राखण हार अपार प्रभ ताकि निर्मल सेव राम राज रामदास पुर कीने गुरुदेव राव सदा सदा हर ध्याई है किछ बिगड़ न लागे नानक नाम सलाही है भय दुश्मन भागै
ਮਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸਮਾਗੈ ਉਚਰਿਤ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਜਸ ਦੂਰ ਤੇ ਜਮ ਭਾਗੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਜਨ ਜਪੈ ਅੰਡਨ ਸਦ ਜਾਗੈ ਤੰਤ ਮੰਤ ਨ ਜੋ ਹੈ ਤਿਤ ਚਾਖ ਨ ਲਾਗੈ ਰਹਾਉ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਮਦਮਾਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦਮਾਨ ਮੋਹ ਬਿਨਸੇ ਅਨੁਰਾਗੈ ਆਨੰਦ ਮਗਨ ਰਸ ਰਾਮ ਰੰਗ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗੈ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੀ ਜੁਗਤ ਵਸ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਜੋ ਕਹਿ ਸੁਕਰਨਾ ਭੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਭਉ ਕਿਛਣੀ ਕਰਨਾ ਦੁਖ ਨ ਲਾਗੈ ਕਦੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤਾਰੇ ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨ ਆਵਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਰਹਾਉ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਾਥ ਹੈ ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਸਾਚਾ ਮਨ ਜੋਰ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਠਾ ਦੁੱਖ ਠਾਓ ਵਿਸਰਾਮ ਪਾਏ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਾਤੇ ਬੌੜ ਨ ਧਾਓ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਨ ਬਲ ਜਾਓ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਬਨੇ ਪੇਖਤ ਗੁਣ ਗਾਓ ਰਹਾਉ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗ ਨਾਦ ਧੁਨ ਇਹ ਬਣਿਓ ਸੁਆਓ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਬਾਂਛਿਤ ਫਲ ਪਾਓ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਰਿਤ ਘਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੁਖਨ ਕੋ ਨਾਸ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਗੁਣਤਾਸ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਰਹੋ ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਸਾਸ ਰਹੋ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬੰਧਵ ਤੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜਾ ਕੋ ਨਿਰਮਲ ਜਾਸ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਹਰ ਗਾਈਐ ਸਭ ਭਲਾ ਮਨਾਵੈ ਸਾਧ ਸਾਧ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੈ ਸੁਣ ਦਾਸ ਮਿਲਾਵੈ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਕਲਿਆਣ ਰਸ ਪੂਰੈ ਗੁਰਕੀਨ ਜੀ ਸਗਲ ਦਇਆਲ ਭਏ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚੀਨ ਰਹਾਉ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬਤਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਆਨੰਦ ਮਹਿ ਪੇਖ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਧੀਰ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਦਾ ਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਰਾਖ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕੋ ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਸ਼ਾਰ ਤੁਝ ਹੈ ਨ ਜੋ ਹੈ ਕੋ ਮੀਤ ਜਨ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਦਾਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਥ ਰਹਾਉ ਜੀਅਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਬੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ਸਾਜਨਾ ਰਾਖੇ ਗੋਵਿੰਦ ਨਿੰਦਕ ਮਿਰਥ ਕੋਏ ਗਏ ਤਮ ਹੋ ਨਚਿੰਦ ਰਹਾਉ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਗਤ ਮੈਂ ਸਫਲ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ਪੂਛ ਪਾਰ ਗਣਤਾਰ ਸਭ ਜੀ ਜਸ ਜਸ ਹਾਥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜਤ ਕਤ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਬਤਾਇਆ ਟੂਟੇ ਜਮ ਜਾਲ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸੰਸਾ ਮਿਟਿਆ ਗਾਵਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਸਹਿ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ ਰਹਾਉ ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਭੈ ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜਾਗਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਸਫਲਤਾਨ ਪੂਰਨ ਭੈ ਕਾਮ ਭਉ ਨਾਟਾ ਭ੍ਰਮ ਮਿਟ ਗਇਆ ਰਵਿਆ ਨਿਤ ਰਾਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਵਿਸਰਾਮ ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਗਟ ਭੈ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰਤੇ ਭੈ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਰਨਾਗਤੀ ਘਟ ਘਟ ਸਭ ਜਾਨ ਮਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ ਆ ਪ੍ਰਭ ਉਪਜਿਆ ਸੁਖ ਸਾਂਤ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚਰਜ ਰੂਪ ਹਰ ਕੀ ਨੀਂਦਾਤ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਰਾਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹਮ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜੋ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਰਹਾਉ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਰ ਮਰ ਜਨਮੇ ਜਨ ਬਿਗਸੇ ਬਿਸਰਿਆ ਮਰ ਮਰ ਜਨਮੇ ਜਿਨ ਬਿਸਰਿਆ ਜੀਵਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਸੇਵਿਆ ਅੰਦਨ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਸਾਂਤ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਘਨਾ ਪੂਰਨ ਭਈ ਆਸ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਿਮਰਤ ਗੁਣਤਾਸ ਰਹਾਉ ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ ਅਰਦਾਸ ਜਨ ਤੁਮੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਥਣ ਥਣ ਧਰਾਵ ਰਹਿ ਨਾਨਕੇ ਸੁਆਮੀ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨ ਭਾਈ
ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖ ਦੀਆ ਏਕਾ ਲਿਵਲਾਈ। ਰਾਵ ਰਾਖ ਲਈਏ ਤਿਨ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਸਭ ਵਿਆਦ ਮਿਟਾਈ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਸਹਾਈ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਆਪ ਰੱਖੀਅਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਭਏ ਪੂਰਨ ਭਈ ਸੇਵ ਰਹਾਵ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਰੋਗ ਮਿਟਾਏ ਜਿਵਾਲੀਅਨ ਜਾ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਦੁੱਖ ਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ, ਮਨ ਵਾਂਛਿਤ ਫਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੋਪਦੇ ਲੁਪਦੇ ਕਰ ਛੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਣੀਏ ਨਾ ਸੁਣਾਏ, ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਧੁਨ ਗਾਵਤ ਬੋਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ। ਰਹਾਓ ਸੇਵਤ ਸੇਵ ਸੇਵ ਸਾਧ ਸੇਵੋ, ਸਦਾ ਕਰੋ ਕੀਰਤਾਏ। ਅਭੈਦਾਨ ਭਾਵੋ ਪੁਰਖ ਦਾਤੇ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਰਸਨਾ ਅਗਹਿ ਗੁਣ ਰਾਤੀ, ਨੈਣ ਦਰਸ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਹੋ ਕਿਰੀ ਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ, ਮੋਹਿ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ। ਸਭ ਹੂੰ ਤਲੈ ਤਲੈ ਸਭ ਉਪਰ, ਇਹੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਏ। ਅਭਿਮਾਨ ਖੋਏ ਖੋਏ ਖੋਏ ਖੋਈ, ਹੋ ਮੋਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਅਤੁੱਲ ਅਤੁੱਲ ਅਤੁੱਲ ਨੈ ਤੁਲੀਐ, ਭਗਤ ਵਿਛਲ ਕਿਰਪਾਏ। ਜੋ ਜੋ ਸਰਣ ਪਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਅਭੈਦਾਨ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣੇ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨਾ ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਜਾਓ ਬਾਰ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ, ਇਹ ਮਨ ਤੁਝੈ ਚਿਤਾਰੈ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ, ਤੁਝੀ ਆਗੈ ਸਾਰੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਬਲ ਬੁੱਧ ਧਨ, ਤੁਮਹਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸੋਈ ਭਲ ਹਮਰੈ, ਪੇਖ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਚਿਰਨਾ ਰੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੁਨੀਤ ਪ੍ਰਭ ਤੋਂ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ, ਮੋਹ ਮਗਨ ਪਤਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਐਸੇ ਮਨੈ ਵਿਸਾਰਨ। ਰਹਾਓ ਸੰਚ ਬਿਖਿਆਲੇ ਗ੍ਰਾਹ ਜਕੀਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਤੇ ਡਾਰਨ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਰਤ ਨਿੰਦਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਦਾਰਨ। ਇਨ ਤੇ ਕਾੜ ਲੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ, ਹਰ ਪਰੇ ਤੁਮ ਸਾਰਨ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਰੰਗ ਤਾਰਨ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੁਨੀਅਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਤ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ, ਧੁਨ ਪੂਰ ਰਹੀ ਦਿਨ ਸਿਆਰ ਰਾਤ। ਰਹਾਓ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੇ, ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਆਠ ਪੈਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇ, ਕੰਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸਤਨ ਤੇ ਜਾਤ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਗਾਏ ਪੇਕ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸਨ, ਅਮਰਧਾਰ ਰਸ ਭੋਜਨ ਖਾਤ। ਚਰਨ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਤ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰਾਖ ਲੀਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਆਪ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀਨੋ, ਬਿਨਸ ਗਏ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ। ਰਹਾਓ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਵੋ ਸਭ ਹਰ ਜਨ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਰਸਨਾ ਆਲਾਪ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਿਵਰੀ, ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਆਤਮ ਤ੍ਰਾਪ। ਚਰਨ ਗਏ ਸਰਨ ਸੁਖਦਾਤੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਜਪੇ ਹਰ ਜਾਪ। ਸਾਗਰ ਤਰੈ ਭਰਮ ਭਏ ਬਿਨਸੇ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਾਪ ਲਾਹਿਆ ਗੁਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਕਉ ਬਲਜਾਈ, ਜਿਨ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਸਾਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਰਹਾਓ ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਾਰ, ਬਾਲਕ ਰੱਖ ਲੀਨੋ, ਪ੍ਰਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਦੀਨੋ। ਦਾਸ ਕੀ ਲਾਜ ਰੱਖੇ ਮਿਹਰਵਾਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ। ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੁਪਦੇ ਦੁਪਦੇ ਘਰ ਸਤਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਬਿਨਸਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਤੇ ਮੰਦਰ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁਲੀ ਅਨੁਪਾ। ਰਹਾ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ, ਜਬ ਵੇਖਿਓ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਵਡਿਆਈ। ਮਗਨ ਭਏ ਊਹਾ ਸੰਗ ਮਾਤੇ, ਓਤ ਪੋਤ ਲਪਟਾਈ। ਆਲ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਕਛੂ ਜੰਜਾਰਾ, ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਭੋਰਾ, ਊਚ ਨੂਚਾ ਬੀਚ ਨ ਖੀਚਾ, ਹੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੋਰਾ। ਏਕ ਅੰਕਾਰ ਏਕ ਪਸਾਰਾ, ਏਕ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰਾ, ਏਕ ਵਿਸਤੀਰਨ ਏਕ ਸੰਪੂਰਨ, ਏਕ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ। ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਸੂਚਾ ਸੂਚੋ, ਸੂਚਾ ਸੂਚੋ ਸੂਚਾ, ਅੰਤ ਨ ਅੰਤਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ।
मिलावल मैला पंजवा बिन हर कामना आवत हे जासे राच माच तुम लागे ओ मोनी मोहावत हे रहाव कने कामनी से सोनी छोड़ खिन मैं जावत हे उर्ज रहो इंद्री रस प्रेरो बिखट गौरी खावत हे त्रिण को मंदर साज सवार्यो पावक तले जिरावत हे ऐसे कड़ में ऐठ हिटी ऐठ हठी लो फूल फूल क्या पावत हे पंच दूत मूंड पर ठाडे केस गहे फेरावत हे दृष्णा वै अंध ज्ञानी सोय रहो मदमावत हे जाल पसार चोग बिस्तारी पंखी जो फहावत हे कौ नानक बंधन काटन को मैं सतगुर पुरख ते आवत हे बिलावल महला पंजवा हर हर नाम अपार अमोली प्राण प्यारो मन आधारो जी चित भव जैसे पान तंबोली रहाव सह समायो गुरु बतायो रंग रगी रंग रंगी मेरे तन की चोली फे सुख लागो जो बड़ भागो सुहाग मारो कथो न डोली रूप न धूप न गंध न दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली कौ नानक प्रेर रवि सुहागन यातनी की मेरी बनी खटोली मिलावल महला पंजवा गोबिंद गोबिंद गोबिंद मई जब ते पेटे सा दया रात ते दुर्म दूर पई रहा पूर्ण पूर्ण संपूर्ण शीतल सान दया।

पर्यो हर चरण गहे प्रभ गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा। अगम रूप अवनासी करता पतत पवित एक निमक जपाई है। अचरज सुनियो प्राप्त भेटले संत चरण चरण मन लाई है। कित विधि है कित संजम पाई है कहो सुरजन कित जुक्ति त्याई है। रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा वो तिसकी लई लई फुन जाई है। नानक शरण शरण सुख सागर मोह टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा। संत शरण संत टहल करी तंद बंद अर सगल जंजारो अवर काज ते छूट परी। रहाओ सुख सहज कर कनु अनंदा गुर ते पायो नाम हरी। ऐसो हरस बर मर न साको गुर पूरे मेरी उल्ट तरी। पेख्यो मोहन सब कै संगे ऊन काहू सगल परी। पूर्ण पूर रहो कृपा निध कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा। मन क्या कहता हो क्या कहता जान पर भीन ठाकुर प्रा मेरे तिसा गए क्या कहता। रहाओ अन बोले को तो ही पछाना जो जीवन में होता। रे मन काय कहा लो डह कह जो पेख थी संग सुनता। ऐसो जान पय मन आन तान न बियो करता कौ नान गुर पय दया राह रंग न कब हो लेता। बिलावल महला पंजवा। निंदा कैसे ही चार परी है हिन्सानी सुनो तुम भाई जो कालर पीत गिरी है। रहाव जो देखे छिदर तो निंदा को माह है पलो देख दुख भरी है। आठ पैर चितवे नहीं पहुंचे बुरा चितवत चितवत मरी है। निंदक प्रभु पुलाया काल ने आया हर जन से बाद उठरी है। नानक का रखाया प्रभ स्वामी क्या मानस वपरा करिया है। बिलावल महला पंजवा। ऐसे काहे पूर परे कर करावे मुकर पावे पेखत सुन सदा संग हरे। रहाव काच बिहार जन कंचन छाडन बैरी संग ही साजन त्याग करे। होन कौर आयन हो मन मीठा बिख्या मह लपटाए जरे। अंधकूब मैं परयो परानी परम गुबार मोह बंद परे कौ नानक प्रभ हो दयारा गुर पीटे काटे बाफरे। बिलावल महला पंजवा। मान तन रसना हर चीना पय नंद मिटे अंधे से सर्व सुख मुख गुरु दीना। रहाओ ए आनंद सब भई सियान प्रभ मेरा दाना बिना हा दे राख अपने को काहू ना करते कछ खीना। बल जाओ दर्शन साधु कह जे प्रसाद हर नाम लीना कहो नानक ठाकुर पारो सह कहू न मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा। गुरपुर है मेरी राख लई अमृत नाम हृदय मैं दीनों जन्म जन्म की मैल गई। रहाओ निवरे दू दुष्ट बहराई गुरपुरे का जपिया जाप कहा करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड़ प्रताप। सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माही ताकि शरण पर्यो नानक दास जाते ऊपर को नाही। बिलावल महला पंजवा। सदा सदा जपिया प्रभ नाम जरा मरा कछ दुख न व्यापय आ गय दर गय पूर्ण काम। रहाओ आप त्याग परिय नित सरनी गुर कह पाया गुर ते पाया हो निदान जन्म मरण की कटिया पासी साची दर गय का निशान। जो तुम करो सोई पल मानो मन ते छूटे सगल गुमान कौ नानक ताकि सरनाई जाका किया सगल जहान। बिलावल महला पंजवा। मान तन अंतर प्रव्याही हर गुण गावत पर उपकार नित तिस रसना का मोल किछ नाही। रहा कुल समूद्र किन पीतर जन्म जन्म की मल्लाही सिमर सिमर स्वामी प्रव अपना आनंद से ती बिख्या बन गाही। चरण प्रभु के बोहित पाए भव सागर पार पराही संत सेवक भगत हरता के नानक मन लागा है ताही। बिलावल महला पंजवा। तीरो देख तुम्हारे रंगा तु ही स्वामी अंतर जामी तू ही वस साध कै संगा। रहा खिर मैं थाप निवाजे ठाकुर नीच कीट ते करह राजंगा कबो न बिसरे ही है मोरे ते नानक दास ही दान मंगा। बिलावल महला पंजवा। अचोत पूजा जोग गोपाल मन तन अर्प रखो हरिया गय सर्ब जी का सर्ब जिया का है प्रतपाल। रहा शरण सम्राट अकाठ सुखदाता कृपा सिंध बड़ो दयाल कंठ लाए राख अपने को तिसनो लगे न ताती बाल। दामोदर दयाल स्वामी सर्बसंत जना

संसार उधर जो कर देखे सोए नानक हुकुम रती रुती थिती आ कौन पानी आ पाता तिस विच तरसी।

सोहन पंच प्रवान सदरी कर्म प्रवे कच्छ खाई उठ पाए नानक गया कर्म खंड का ए होता ज्ञान खंड का कितने पौन पानी वह संसर के

निर्भौ निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सत जुगाद सत है भी सत नानक होशि।

अंत मूर्ख अंत घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत गल वाए संत पापी पाप असंत मूर यार करे संत मलेच मल पाए असंत निंदक करे नानक नीच कह मारे न जाना के जो तुम पावे सही तरीका सुना सुना संत नाम संत नाम राम राम संत दो असंत कहें सिर्फ।

निष्कपट निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी।

असंत मूर्ख अंध घोर असंत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत गड़बड़ हत्या कमाए संत पापी पाप असंत कूड़े आश्रय फिराए संत मलेच्छ मल पाए असंत निंदक करें पा नानक नीच कहें

आस विश्वित धरती थाप थी धर्म करमी करमी होए विचार चार जिते सोहन पंच परवान नदरी कर्म सोवे काच खाई उथे पाए।

निर्भौ निर्वै अकाल मूरत अजुनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी।

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख गल वाए संख पापी पाप असंख मूड़े आर करे सदाए संख मलेच मल पक पाए असंख निंदक करे पा नानक नीच कहे विचार मारे न जावा के जो तुम पावे सही परिकार सदा सदा मत संत नाम संत नाम राम राम।